0: केही समय दूध नआएकाले बाध्य भएर बत्तलको दूध खुवाउनु परेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
1: सुरुम सुरुम त म दुध नै आवाए अनि बोतलके दुध खुवाओ अनि एक हप्ता बसे मने धीरे धीरे आए लागल तो मने बिना बोतल के दूध मने मोर दूध फिर नहीं पकड़त तो एक मारे अपन छाई के कहते तो बोतल के दूध फिर खवाई थो अपन फिर खवाई थो।
0: बास्करी कई सृजना रसायली निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ। कार्यालय